0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर दर्द करा रहा है तो, क्योंकि आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, यहाँ पर आपको हर मर्ज की दवा मिलने वाली है। और प्रोग्राम चल रहा है सुपरहिट सॉन्ग्स, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। ट्यून इन करके रखिए, बैक टू बैक ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे एक से बढ़के एक नंबर्स।

और इसी तरीके से आपके रेडियो सेट पर एक के बाद एक धमाल आते रहेंगे। प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM, रेनबो सुरों का लखनवी एहसास।

10:56 हो गए हैं और प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स को यहीं वाइंड अप करने का समय है, क्योंकि न्यूज ब्रेक के उस पार हमें रुख करना होगा दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो 100.7 FM रेनबो पर आगे भी आप बेहतरीन प्रोग्राम सुनते रहेंगे। अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, और तब तक के लिए आप ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए और उसके बाद तुरंत हम हाजिर होते हैं लेकर के।

साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की भी शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के पेशेंट्स को तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सक यहां पर ओपीडी करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने आधिकारिक पात्र वादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की है। मेरी जनता से यह अपील है कि ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। वो अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आकर करवा सकते हैं, न उनसे हम कोई अतिरिक्त शुल्क लेंगे, और यदि पहले से उनके कोई दीवानी प्रकरण लंबित हैं और उनमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था भी है, ऐसा उन्होंने कहा। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। शासन के आदेश के तहत अब हाई स्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों में स्कूल स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर इन दोनों विषयों में अब 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ये परीक्षा बोर्ड की ओर से अलग आयोजित की जाएगी। चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं का आगमन कल से ही होने लगा था। देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं। आगरा में साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। साइबर क्राइम सेल और साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जनवरी 2026 से अगस्त 2026 के दौरान साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 42,000 से अधिक मोबाइल फोन के IMEI नंबर और 5,000 से अधिक मोबाइल सिम बंद कराए हैं। साइबर अपराधी विभिन्न मोबाइल नंबरों और उपकरणों के माध्यम से लोगों को फोन पर साइबर ठगी की वारदातों की अंजाम देते थे। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ग्यारह बजकर के 4 मिनट हुए हैं और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे शुरू हो चुका है। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला हूँ आपके साथ, प्यार भरा सलाम नमस्ते आपको। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इसी बात के साथ। और बात यह है कि आपके जो भी संदेश हों वो हमारे सारे श्रोताओं के लिए कामगर हों, आप कुछ सोच समझ कर लिखें। हमारा मेल आईडी है fmakashwanilucknow@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर कॉल करके भी अपना संदेश लाइव भेज सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर आपको हम बताएं, कई सारे

श्रोता ऐसे हैं जिनको हमारे स्टूडियो के नंबर्स याद हैं, और अगर जो नए श्रोता हमसे जुड़े हैं वो हमें कोई संदेश देना चाहते हैं फोन लाइन के जरिए, तो वो हमारे नंबर्स नोट कर सकते हैं। 2238845 ये हमारा एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 2238852। इन दोनों नंबरों के आगे आपको 0522 कोड लगाना है, 0522 2238845, 0522 2238852, ये दो नंबर हैं। साथ ही ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com। आप हमें अपने संदेश लिख भेजिए, और तब तक एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं, और इसके तुरंत बाद आपके मेल्स को पढ़ने की जो कवायद होगी वो शुरू होगी, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसान।

0: ग्यारह बजकर के ठीक 11 मिनट हुए हैं और अब बारी है संदेश की, और हमने कहा था कि इस गाने के तुरंत बाद आपके संदेशों को हम ऑन एयर करना शुरू करेंगे, और इसी बात के साथ एक कॉल पर हमारी श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं और देखते हैं कि उनका संदेश क्या है, कौन है वो श्रोता। हेलो,
1: जान से प्यारा हमारा है रेनबो।
0: जी,
1: जान से प्यारा हमारा है रेनबो, श्रोताओं के मनोरंजन का सहारा है रेनबो।
0: जी,
1: व्हाट्सएप और फेसबुक बेकार की चीज है, व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया बेकार की चीज है, श्रोताओं का सबसे प्यारा और दुलारा है रेनबो।
0: क्या बात है।
1: हेलो, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, और गुड मॉर्निंग आपको भी, नमस्ते। और आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप कैसी हैं?
1: जी मैम, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हूँ?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या अपना नाम भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: मैं बोल रही हूँ सुधि सिंह
0: जी,
1: अंदाजपुर, जिला हरदोई, पोस्ट कौड़िया, थाना अतरौली, तहसील संडीला।
0: जी सुरभि जी, आपने क्या किया है नाश्ते में? आप में इतनी एनर्जी है आज।
1: नहीं, मैं पेड़ा खा रही हूँ, खोया वाला, बहुत बढ़िया वाला।
0: खोया वाला पेड़ा खा रही हैं और खाते खाते बात करी है। घर पे बना है कि बाहर से खरीद के लाई हैं?
1: देखिए मैम, बाहर की मैं कोई चीज नहीं खाती हूँ, मेरी नानी बनाती है घर पे, वो बहुत अच्छा लगता है, नानी बहुत अच्छा पेड़ा बना लेती है।
0: तब तो फिर ये बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत टेस्टी होगा, हमें पूरा भरोसा है। अब
1: बहुत टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी है सच में।
0: हम समझ गए। तो आज हमारे श्रोताओं को देखिए आप कितनी एनर्जी, आपने संदेश देने से पहले आपने कितनी अच्छी बात कह दी है, आपकी एनर्जी सुन के हमारे श्रोताओं को मैसेज चला गया है कि आप बाहर का कुछ नहीं खाती हैं, घर का खाती हैं, अच्छा खाती हैं, हेल्दी खाती हैं, इसीलिए आप इतनी ताकतवर हैं।
1: जी बिल्कुल, शालिनी मैम से मैं कहूंगी कि जल्दी जल्दी आया करिए, कल हमारी बात हुई थी उनसे, हमने उनको मैंने सिर्फ अपना एड्रेस बदला था।
0: जी,
1: अभी तक मैं सीतापुर का एड्रेस बताती थी, अब मैं अपने घर का एड्रेस बताती हूँ। रहती तो मैं यहाँ सीतापुर में नानी मामा के पास।
0: जी,
1: लेकिन मैं अपने एड्रेस बताती हूँ आपको।
0: ठीक है सुरभि जी, आप अपना जो संदेश है वो हमें बता दीजिए।
1: जी संदेश बताऊंगी, और अंजू मैम को गुड मॉर्निंग, और मेरा संदेश ये है आज का कि अभी मैं अपने वहां यहाँ बैठी थी बाहर पोर्ट में।
0: आप जी बताइए, संदेश बताइए। जी
1: हाँ, संदेश मेरा यही रहेगा कि अभी मैं बाहर बैठी थी अपने वहां, तो एक ऑटो आ रहा था
0: जी,
1: और एक बाइक भी आ रही थी
0: जी।
1: तो बाइक जो थी वो अपनी अपनी तेज रफ्तार में थी
0: जी,
1: और जो ऑटो था वो अपनी धीमी रफ्तार में था
0: जी।
1: वो जो बाइक थी वो ऑटो के बीच में आ गई
0: जी। सुरभि जी थोड़ा सुनिए सुनिए सुरभि जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि हमारे पास ना समय की बाध्यता होती है, सारे श्रोताओं को लेना होगा।
1: जल्दी आपको बता रहे हैं तो इसीलिए मैं श्रोताओं से कहना चाहती हूँ
0: जी,
1: खुद भी सुरक्षित रहे, और अगर वो ऑटो वाला कह रहा है कि हमसे गलती हो गई या आप उसको माफ कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा
0: जी,
1: तो

0: नहीं हुआ मैं कहूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत।
0: अगर वो अपनी गलती मान रहा है तो उसको सुधरने का मौका दीजिए और आप भी ध्यान ना रहे वहाँ जाइए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपका, बिल्कुल।
0: उल्टा उससे उल्टा लड़े ना, और उसको अगर वो गलती अपनी मान रहा है तो उसको माफ कर उसे जाने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, ये आपके संदेश के लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही बाकी श्रोताओं के संदेश भी हम जोड़ते रहेंगे। और ये संदेश सुरभि जी ने दिया है कि कैसे आपस में गाड़ियों की भिड़ंत होती है, मौसम खराब है, अगर बीच में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इस तरीके का व्यवहार तो नहीं करना चाहिए किसी के साथ, थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। खैर, आपके संदेशों को हम वन बाय वन ऑन एयर करते रहेंगे और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, हम तुरंत आते हैं वापस।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
7: बिल्कुल, आप सुरों का लखनवी एहसास सुन रहे हैं और ये सुर आपको आपके संदेशों के साथ ऑन एयर हो रहे हैं। आज आप तक आपके संदेश आपके रेडियो सेट पर अपनी आवाज में अपने संदेशों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम चल रहा है और एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ी हैं और देखते हैं कि क्या है उनका संदेश। हेलो,
8: हेलो, गुड मॉर्निंग चंद्रकला मैम जी, कैसी हैं आप?
7: गुड मॉर्निंग, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
8: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके तो बहुत ज्यादा ही अच्छी हो गई हूँ।
7: अरे वाह, आप अपना नाम भी हमें हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
8: जी बिल्कुल बताएंगे, मेरा नाम है रोशनी और ग्रामा पोस्ट बमना तहसील सरीपुर जिला उन्नाव
7: जी,
8: संजीव से सुन रही हूँ।
7: ओके, और क्या है आज आपका संदेश?
8: मेरा बहुत छोटा सा ही है संदेश
7: जी,
8: कि अपना ख्याल रखने के लिए जैसे अभी मौसम बिल्कुल चेंज हुआ है
7: जी,
8: तो अपना इस

0: बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, क्योंकि एक वायरल चल रहा है जो सर्दी जुकाम खांसी, तो
1: जी
0: ये इसलिए चल रहा है, एक तो वायरल है, और
1: जी
0: दूसरा हमारी कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो हम इसे नहीं कर रहे हैं। एक
1: जी
0: ठंडा पानी जो हम पी लेते हैं, अचानक से गर्मी हुई पानी पी लिया, अब
1: जी
0: वो ठंडा गर्म करके ही हो रहा है। तो
1: जी
0: मेरे श्रोताओं से यही कहना है कि थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें
1: जी
0: और अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही
1: जी
0: संदेश है।
1: और कोई संदेश आपका?
0: और दूसरा संदेश मेरा ये रहेगा कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, तो
1: अच्छा
0: उसकी सबसे पहले सभी को बधाई, सारे श्रोताओं को, आपको,
1: जी
0: और जो अभी मूर्तियां लाई जाएंगी तो उसका जो विसर्जन होगा तो
1: जी
0: वो इधर मान लो या कभी पानी इधर ना फेंके, वो
1: जी
0: जाके उसका सुरक्षित से ही विसर्जन करें, जैसे
1: जी
0: कहीं माटी में गड्ढा खोद के फिर वहां पे विसर्जन करें। क्योंकि
1: जी
0: जहाँ हम देखते हैं ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि लोग पहले तो बप्पा को इतने मतलब उत्साह के साथ ले आते हैं घर में, बढ़िया से धूमधाम से पूजा करते हैं, लेकिन जब विसर्जन का टाइम आता है तो ऐसे ही जाके कहीं नदियों में नालियों में ऐसे फेंक देते हैं, तो
1: जी
0: ऐसा अपमान ना करें।
1: जी चलिए, बहुत बहुत
0: और
1: शुक्रिया आपका, आपका संदेश बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सरोजनी जी।
0: मैं रोशनी रावत बात कर रही हूँ, और हमारे साथ अभी सरोजनी दीदी सुन रही हैं आपको, नीलू शर्मा दीदी, गुलप्ता दीदी, बबीता राव जी, साहिबा जी, साजिया जी,
1: आप सभी
0: और
1: कॉल पे
0: डॉक्टर
1: हैं क्या एक साथ?
0: कॉल पे सब लोग नहीं है। हाँ
1: नहीं, मतलब मुझे लगा कि सरोजनी जी ने हमसे बात की थी।
0: ठीक, आपसे सरोजनी दीदी ने की बात की थी,
1: जी
0: मैं लाइन पे हूँ।
1: ओके ओके, चलिए चलिए ठीक है, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: थैंक यू। माइंड
1: ओके
0: भैया ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे
1: ओके
0: हैं,
1: जी
0: पर
1: ओके, थैंक यू थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स भी हमारे पास ढेर सारे हैं, और मेल्स हमारे पास ढेर सारे इसलिए हैं क्योंकि आपके संदेश हैं, और इसलिए उन संदेशों को पढ़ना ज़रूरी है। पता है, संदेश बोलते बोलते ना मुझे संदेश याद आती है और भूख लगने लगती है। बाबू अंसारी जी का मेल हमारे पास है, गुड मॉर्निंग लिखा है, और लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। संदेश इनका ये है कि घर संभालने वाली माँ की मेहनत अक्सर नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसी की मेहनत से घर में सुख शांति और अपनापन बना रहता है। उसके प्यार और त्याग की हमेशा आपको कद्र करनी चाहिए। बाबू अंसारी जी, आपने बाराबंकी से ये संदेश हमें पहुंचाया है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा संदेश है आपका। हमें कोई वक्त या कोई ओकेजन या कोई डे नहीं देखना चाहिए जब मम्मी को थैंक यू बोल सकें, माँ को जब थैंक यू बोल सकें। माँ के लिए हर दिन होना चाहिए, जब आपको जैसे मौका मिले माँ की मदद करनी चाहिए, माँ से प्यार से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए बार बार कि आप सुंदर हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, सबसे बेस्ट हैं, और थैंक यू कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल का, आपके संदेश का। वकील अहमद जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगी। संदेश ये है कि बारिश में बच्चों को नदी तालाब के पास न जाने दें, कोई हादसा न हो, इन्होंने लिखा है ऐसा। आपने हमें सीतापुर से लिखा है जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए, और आपके संदेशों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा यूं ही, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस ये रहा आपके रेडियो सेट पर अगला ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें

0: 8700142 पर
1: 8700142
2: 11:43 हो गए हैं और आपकी मेल्स का सिलसिला जारी है। नागेश कुमार जी का मेल आया है हमारे पास और इन्होंने लिखा है कि बहुत फोन मिलाते हैं ये हमारे स्टूडियो पर, लेकिन कॉल नहीं लगता है आपका। नागेश जी, आपने ये तो लिख दिया लेकिन आप इसी के साथ संदेश लिख देते अगर आपने कॉल ट्राई किया था और फोन नहीं लगा, तो उसके लिए हमें बहुत खेद है। हम इतना ही कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ कॉल ट्राई करने लगते हैं और कॉल्स जो है वो इंगेज हो जाती हैं, नेटवर्क बिजी हो जाता है, इस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। और बाकी आप संदेश अपना मैसेज के माध्यम भी से भी पहुंचा सकते हैं नागेश कुमार जी हम तक, और आपका स्वागत है। आप हमें मेल में लिख भेजें। रिंकी पिंकी जी का भी मेल है, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लगा है कि इनका भी फोन बहुत मुश्किल से लग रहा है, कॉल कैसे लग रही है, कॉल कट जा रही है, कुछ इनको भी दिक्कत आ रही है। तो रिंकी पिंकी जी, आप भी मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर कॉल नहीं कनेक्ट होती है, ज़रूरी नहीं है हर बार कॉल कनेक्ट हो, कई बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या नहीं लगती है, इंगेज आती है, सभी ट्राई करते हैं। अगला मेल हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी के हैंडल से आया है और इन्होंने लिखा है, अच्छा पिंकू सोनी जी ने लिखा है टिकैत नगर से, और आपने हमें लिखा है संदेश कि कुछ लोग नशा कर लेते हैं और उसके बाद वो अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा होश में नहीं रहते हैं। तो बाकी जो मासूम लोग होते हैं, आसपास रहने वाले सामान्य लोग होते हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके का कुछ भी सेवन करते हैं तो अपने घर पे सेवन करें, बिल्कुल सही बात है। ये संदेश भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके के मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने घर में रहें, अपने साथी अपने लोगों के बीच उनके निगरानी में करें, ऐसे समाज में बाहर निकलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने, दूसरों के लिए अव्यवस्था करना अच्छी बात नहीं है। मुनेश कुमार जी का भी हम तक संदेश पहुंच चुका है, इन्होंने लिखा है बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है, सावधानी बरतें, एक छोटा सा संदेश है इनका। और इन्होंने इस संदेश के साथ अपने कई साथियों के नाम ऐड किए हैं, सतीश कुमार, कन्हैया लाल, सुनील कुमार, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जी। छबीराम सिंह जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने फरुखाबाद से मेल किया है। छबीराम सिंह जी, मेरा नाम चंद्रकला है, कृपया यही नाम लिखें और बाकी अन्य किसी नाम को आप मत लीजिए, मत लिखिए, कोई निकनेम आप ना दीजिए क्योंकि हमारा ये प्रोफेशनल नाम है और हम इसी के साथ जाने जाते हैं। इन्होंने लिखा है संदेश आपका यही है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति हम लोग दिखाते हैं, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जो मौका होता है हमारे पास 365 दिन तक होता है, हर दिन आप देशभक्ति दिखाइए और हर दिन बड़ी देशभक्ति होनी चाहिए, चाहे किसी भी बारे में हो, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए बिजली बचानी हो, अपने देश की धरोहरों को सुरक्षित रखना हो, सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रखना हो, उस सब में योगदान दीजिए, अपने देश के लिए योगदान दीजिए छोटा छोटा। आपका संदेश बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आपके संदेश के लिए बहुत शुक्रिया। और इन्हीं संदेशों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपकी कॉल या मैसेज जो भी हमारे पास आएगा हम इस खूबसूरत गाने के बाद आपके रेडियो सेट पर ड्रॉप करेंगे।

11:53 हो गए हैं और आपके जो संदेश हैं वो हमारे पास हैं अभी भी। और इन्होंने लिखा है, हैदराबाद तेलंगाना से हमें, मुजम्मिल से शेख हैं, और इन्होंने लिखा है

कि सिस्टर अब रिश्ते की ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा रिश्ते भी ज़रूरत के हिसाब से निभाए जाते हैं, लोग दिल से नहीं मतलब से पाए जाते हैं। क्या बात है, यहाँ पर खुद को बदलने की हिम्मत किसी में कहाँ है। इन्होंने लिखा है, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं बताइए। इन्होंने लिखा है, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और थोड़ा सा जो है आपने प्रैक्टिकल बात लिखी है, बाकी बात आपकी सही है। तो मतलब आप खुद को ऐसा बनाइए कि लोग अगर आपका फायदा भी उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छे बनिए, आप किसी के काम आ सके, ऐसी पर्सनालिटी बनिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोगों को भी समझने की कोशिश करिए। देखिए प्रैक्टिकल होना भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, अपने उद्देश्य को पाने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना भी अच्छी बात है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का मेल हमारे पास है। अच्छा, इन्होंने हैंडल सरोजनी राजपूत जी ने मेल किया है, किसी कारणवश मैं आपसे बात नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, आपका कॉल कनेक्ट हुआ था हमें और आपके बहुत अच्छे अच्छे संदेश आए सभी श्रोताओं के हम तक, और कॉल्स के माध्यम से भी आए और कॉल भी हमारी कनेक्ट हो रही थी। इन्हीं सारी बातों के साथ अब तो संदेश हमारे हैं नहीं, कोई श्रोता हमारे छूटे नहीं, आज बहुत सारे संदेश थे और जिनके रिपीटेड मेल्स थे हमने उनको शामिल नहीं किया है। ये हमारी पॉलिसी है और इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि एक मेल अगर आपने एक बार कर दी है तो बार बार ना करें। इन्हीं बातों के साथ अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और जितना आपको जो भी आपको पसंद हो वो करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छे बने रहिए। मैं यानी कि आपकी दोस्त चंद्रकला आपसे लेती हूँ विदा, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, लेकिन अगली खूबसूरत आवाज़ आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। तो कौन है वो आवाज़, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा 100.7 FM रेनबो। बाय बाय, मैं आपसे कहती हूँ फिर से, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने आधिकारिक पात्रवादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की। मेरी जनता से यह अपील है कि उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वह अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आकर करवा सकते हैं। न उनसे हम कोई अतिरिक्त शुल्क लेंगे, और यदि पहले से उनकी कोई दीवानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है।

सकते हैं। ना उनसे हम कोई अतिरिक्त शुल्क लेंगे और यदि पहले से उनकी कोई दीवानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है। प्रदेश को अधिक सुरक्षा और अपराध रोधी राज्य बनाने की दिशा में 18 सितंबर को प्रदेश की 34 जिलों की 157 तहसीलों में राज्यव्यापी मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें भूकंप, रासायनिक रिसाव और आग जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को वास्तविक परिस्थितियों के करीब जाकर परखा जाएगा। इस दौरान खोज एवं बचाव, सुरक्षित निकासी, चिकित्सा सहायता, राहत तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। शासन के आदेश तक अब हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञानों में विषयों में स्कूल स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर इन दोनों विषयों में अब 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ये परीक्षा बोर्ड की ओर से अलग से आयोजित की जाएगी। जारी एक बयान में बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के जिन छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत अभी तक अपना पंजीकरण और आधार सत्यापन नहीं कराया है, वे समय से पहले रहते प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। छात्राएं 13 सितंबर 2026 स्थान परीक्षा भवन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अपर आईडी, स्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका, निवास एवं आय प्रमाण पत्र जमा कर प्रक्रिया सुनिश्चित करें ताकि योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। प्रदेश में उन्नत स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने हेतु दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संचालित नंद बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रचार प्रसार तथा प्रदेश के डेयरी सेक्टर में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में मंडलावार डेयरी कॉन्क्लेव कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज झांसी, चित्रकूट एवं कानपुर मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th एडिशन,
6: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
5: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।

जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि हर नया दिन नई उम्मीद, नई खुशियों और नई चुनौतियों के साथ आता है। तो बस ऐसे ही एक नए दिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर, और आपकी दोस्त जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। भाई 12:09 का वक्त हो चला है और ये जो वक्त है वो जितनी भी अपनी लेडीज लोग हैं ना उनके लिए फिक्स हो जाता है। यूजुअली यही होता है कि इसमें हम वो सारी बातें करते हैं जो हमारी बहनों के साथ, हमारी जितनी भी फीमेल्स इस वक्त हमें सुन रही होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आज यानी फ्राइडे को तो स्पेशल सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका नाम है स्वयं सिद्धा, जहाँ हम बात करते हैं उन सशक्त महिलाओं की जिन्होंने खुद के लिए तो कुछ बेहतर किया ही बल्कि समाज में लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी है। वैसे आज के समय में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो समाज में जो महिलाएं हैं उनकी हम इम्प्रूवमेंट का, उनकी डेवलपमेंट का अंदाज़ा इस बात से बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि उस किसी भी समाज की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना अपने डिसीजंस को लेने के लिए काबिल हैं। और जब आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ उपलब्धियां हासिल नहीं कर रही बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते भी तैयार कर रही हैं, नए रास्ते खोल रही हैं। उनकी सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि समाज की उस सोच में एक बदलाव की कहानी है, एक नींव है जो आगे चलकर बहुत कुछ शायद बेहतर करेगी। तो चलिए ऐसी ही महिलाओं पर बेस्ड होता है हमारा आज का ये स्वयं सिद्धा। ऐसी बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी खुद के इंसान के लिए तो है ही है बल्कि जो भी सुनता है, जो उनकी कहानियों को पढ़ता है, जो उनको जानता है उनके लिए भी कुछ बेहतर जिंदगी में जरूर होता जाता है। तो चलिए अगला गाना फिलहाल हम आपको तक पहुंचाएंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे कि आज स्वयं सिद्धा में हम किस तरह कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में मोटिवेटेड हों और साथ ही आसपास के अपने घर की आने वाली पीढ़ियों में जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी मोटिवेट करें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी हाँ, इसी चुनर को सर पे रखने से लेकर सर पे रखने के साथ साथ आसमान में उड़ने तक का सफर तय किया है आज की महिलाओं ने। और इन्हीं महिलाओं पर बेस्ड होता है हमारा फ्राइडे का स्पेशल क्षेत्रुपा, जिसमें हम स्वयं सिद्धा की बात करते हैं और कुछ ऐसी महिला की बात करते हैं, कुछ ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल पेश किए होते हैं। और आज जिस हम चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जिस चीज़ को हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिस चीज़ के थ्रू महिलाओं ने एक बहुत बड़ा आसमान का सफ़र तय किया है, बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त किया है, वो है साहित्य। जी हाँ, लिटरेचर, लिखना, पढ़ना, समझना, जो जहन में चल रहा है उसको कहीं पर उकेर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही एक प्रोफेशन होता है साहित्य। हम बात करें साहित्य तो सिर्फ शब्दों को पन्नों पर उतारने का नाम नहीं होता है, बल्कि अपने समय की आवाज बनने का नाम है। और जब हम साहित्य की दुनिया में महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो हमारे समाज में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी लेखिकाएं हैं जो पूरी परंपरा के साथ दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी कलम से समाज, रिश्तों, स्त्री जीवन और मानवीय संवेदनाओं को एक नई भाषा और साथ ही परिभाषा भी दी। और इन महिलाओं ने खासकर ये साबित किया कि कलम हाथ में हो तो सिर्फ कहानी नहीं लिखती, वो सोच बदल सकती हैं, वो सवाल उठा सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते बना सकती हैं। और अगर हम ऐसी ही लेखिकाओं की बात करें तो उन्हीं में से एक महान लेखिका रही हैं महादेवी वर्मा जी, जिनकी आज है पुण्यतिथि। और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना, यानी उनकी लेखनी को याद करना, जिसने संवेदना, करुणा, नारी चेतना और मानवीय मूल्यों को बेहद खूबसूरती से शब्द दिए थे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं महादेवी जी की तो हम जानते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक रही हैं। उनकी आवाज़, उनकी पहचान सिर्फ कलम थी नहीं, उन्होंने बल्कि अपनी कलम से समाज सुधार के रूप में एक बहुत बड़ा काम किया। शिक्षाविद तो रही, लेखिका और समाज सुधारक भी रही थी। उन्होंने अपने साहित्य के जरिए स्त्री के अनुभवों और उनकी स्वतंत्र पहचान को एक मजबूत आवाज दी थी। और शायद यही साहित्य की सबसे बड़ी ताकत होती है कि कलम वक्त के साथ तो चलती है, साथ ही साथ आने वाले भविष्य की जो दिशा है और दशा, सब चीज बदलने की ताकत भी रखती है। तो चलिए, महादेवी वर्मा जी के बारे में हम कुछ और भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत अच्छा सोच सकती हैं, आपके जहन में बहुत सारे विचार चलते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अगर आपने पन्ने पर उकेर दी, पन्ने पर लिख दिया उनको, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए समाज के लिए भी, आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, तो ज़रूर आप उस चीज़ को करिए। और कैसे कर सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो अगला गाना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने को और सुने रहिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।
1: ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
6: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
5: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
7: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
8: सुरों का लखनवी एहसास।

जी हाँ दोस्तों, वक्त का अंदाजा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। 12:33 का वक्त हो चला है ऑलमोस्ट। देखिए हमारे पास आधा घंटा जो था वो निकल चुका है। और आज के प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हम बात कर रहे हैं कि साहित्य जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रोफेशन है, या कह सकते हैं ना इसको कलम की ताकत, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और जब हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कलम से सिर्फ साहित्य को समृद्ध नहीं किया था, बल्कि ये भी दिखाया कि एक महिला की सोच, संवेदना और सकारात्मकता, उसकी रचनात्मकता सबसे बड़ी ताकत किसी भी महिला के लिए बन सकती है। उसकी लेखनी ने स्त्री मन की भावनाओं को आवाज़ दी थी। और ख़ासकर जब हम महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जहां पर उन्होंने स्त्री मन को छुआ था। साहित्य में महिलाओं को उन्होंने एक मजबूती प्रदान की, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और आज भी अगर आप देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत खूबसूरती से चीज़ों को आसपास की महसूस करते हैं, समझते हैं और अपने विचारों को शब्दों में ढालने का हुनर रखते हैं। बस ज़रूरत होती है कि बस वो काम कर जाने की, कि एक आप कलम उठाइए, एक कॉपी लीजिए या एक पेपर लीजिए और उस पर लिखना जो भी आपके जहन में चल रहा है उसको शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम सब देखते हैं कि ये जो लेखन का कार्य है ना, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है। कहानी, कविता, उपन्यास, साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, पत्रकारिता, ब्लॉगिंग, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटिव राइटिंग जैसे बहुत सारे रास्ते हैं जो इसके साथ साथ खुलते जा रहे हैं। तो मतलब एक ज़माना हुआ करता था ना, सिर्फ जब लिखा तो किताबें ही छपती थी, उसके लिए पब्लिशर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको पार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो शायद घर बैठे आपको बहुत सारे तरीके बता दें और बहुत सारी आगे की जो राहें हैं उनको आसान कर दें। तो बस कोशिश करिएगा, अगर आपके भी अंदर शब्दों को महसूस करने की ताकत है तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं लिखना शुरू कर दीजिए। और आगे हम आपको ऐसी ही बातचीत करवाने वाले हैं एक साहित्यकार से जिन्होंने बहुत पहले से लिखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख डाली और किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्या क्या चीज़ें उनको साहित्य से मिली, क्या क्या आपको मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन अगले गाने के बाद। तो बस ये देखिए, उड़ी रे आपके रेडियो सेट पर आ जा रहा है। यस, जैसे जिया रे इसमें अनुष्का शर्मा ने किया ना, मुझे लगता है वो बुलंदी, वो हवाओं को छूना, हवाओं से बात करना और ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीना हर किसी महिला को आना चाहिए। तो बस इंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, नीति मोहन की खूबसूरत आवाज थी आप सभी की रेडियो सेट पर। इसी के साथ देख लीजिए स्टूडियो की जो क्लॉक है इतनी तेजी से भाग रही है, 12:40 का वक्त दिखा रही है और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा स्वयं सिद्धा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गाने के बाद हम आपसे बात करवाएंगे एक ऐसी महिला की, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साहित्य को अपना हथियार बनाया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कहते ना जो भी जहन में थॉट्स चल रहे होते हैं उनको पन्नों पे उकेरा और वो बहुत सारे लोगों

0: के लिए प्रेरणा भी बनी। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं शहर की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर करुणा पांडे जी का। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद, सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन वंदन
0: जी।
1: और
0: करुणा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे जितने भी लिसनर्स के साथ आप जुड़ रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ करुणा जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी जो अभी महिलाएं शायद इस वक्त हमें सुन रही हों, उनके लिए आपको क्या लगता है कि ये जो साहित्य है एज अ करियर, ये कैसा होता है और किस तरह जो जहन में हमारे चल रहा होता है हम उसको पन्नों पर कैसे लिख सकते हैं, कैसे संजो सकते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और आज के युग का ये, मैं तो कहती हूँ, सबसे ज्वलंत विषय है। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग महादेवी वर्मा जी को याद करते हैं। आज उनकी, आज के दिन कवित्री जी
0: जी पुण्यतिथि है आज
1: रे,
0: इनकी,
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: पुण्यतिथि है इनके, चित्रकार सबसे, इन्होंने रेखा चित्र जो लिखा है गुल्लू,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: एक बहुत ही पठनीय भी है और अनुकरणीय भी है। और
0: जी
1: उस रेखा चित्र में उनके जो भाव हैं, संवेदनाएं हैं, वो जिस तरीके से सामने आती हैं, तो उनका पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है।
0: बिल्कुल
1: उनको हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण बहुत सारी चीजों से उनको नवाजा गया है।
0: जी
1: और आज हम उनको नमन करते हैं और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि करुणा जी हमने कहा था कि हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स में, खासकर जो महिलाएं हमें इस वक्त सुन रही हैं, उनको बताएं कि एज अ प्रोफेशन या एज अ करियर या लिखना, हम नॉर्मल भी अगर देखें, हम उसको बहुत ज्यादा करियर के उसमें ना ले जाएं, तो लिखना कैसा है, एक इंसान के लिए लिखना कितना जरूरी हो जाता है?
1: हाँ देखिए, ऐसा होता है कि ये मतलब एक कैरियर के रूप में नहीं, बल्कि मैं सोचती हूँ कि लेखन जो है बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने का एक जरिया होता है,
0: बिल्कुल
1: है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें में, खासतौर से स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए हम देखते हैं, तो कई जगह वो बहुत कुछ अनुभव करती हैं,
0: जी
1: लेकिन होता क्या है कि उनकी बात को मतलब उनको दबा दिया जाता है, और वो जो उनकी बात होती है, उनके जो भाव होते हैं, वो कागज पर तो छोड़ दीजिए, समाज में भी नहीं आ पाते हैं। तो
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह से मैं देखती हूँ कि जो साहित्य है वो महिलाओं को एक कहने का, अपनी बात को, अपने अनुभवों को, अपनी व्यथाओं को कहने का मंच देता है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: जिस अनुभव को समाज कहता है कि आपका निजी है, साहित्य उससे सामाजिक विमर्श का विषय भी बना देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन सिर्फ जो महिला पत्रकार लेखिका हैं, उनके उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में जो भी महसूस करते हैं, क्योंकि संवेदना जिसमें होती है वही महसूस करता है,
0: बिल्कुल।
1: ठीक है?
0: और
1: और उस
0: महिलाओं के लिए बिल्कुल कहा जाता है कि संवेदनाएं ऊपर वाले ने बहुत कूट कूट कर भरी, नवाजा है उनको संवेदनाओं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल संवेदनाओं से भरे थे, क्योंकि उन्हें कई रोल निभाने पड़ते हैं ना, एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, कितने रिश्ते होते हैं और सारे रिश्ते महिलाओं से जुड़ते हैं। जब
0: बिल्कुल
1: एक बेटी बहू बन के जाती है तो कितने सारे रिश्ते एक साथ अपने साथ ले जाती है,
0: जी
1: तो उसकी संवेदनाएं जो होती हैं वो विभिन्न तरह की जो आयाम होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये चीज जो है महिलाओं के साथ है, हालांकि संवेदनशील पुरुष भी होते हैं, लेकिन जो भगवान है उसने पुरुष को थोड़ा सा कठोर बनाया है,
0: जी
1: ठीक है? तो इसलिए जो है, जो महिलाएं हैं, इनके लिए साहित्य का ऐसा मंच है जहां पर वो अपने जीवन की उन बातों को जो कह नहीं सकती हैं, वो कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से उसको सामने लाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम कोई चीज सामने ले आते हैं तो अंदर से खाली हो जाते
0: खाली
1: हैं।
0: हो जाते, कहते हैं ना, बहुत बार करुणा जी इस चीज को हम लोग भी महसूस करते हैं कि जो जहन में चल रहा है वो एटलीस्ट हम किसी से शेयर कर लें, और जब शायद हमें जिंदगी में वो कोई इंसान नहीं मिल रहा, तो जो कोरे कागज हैं वो शायद बहुत ही खूबसूरत माध्यम है जहां पर हम चीजों को अपनी उन कागजों के साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है कि सिर्फ हमको, हम उनको देखिए, लेखन में क्या है, आप कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृतांत हैं, और शोध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के विधि में, फिल्म, और अब तो डिजिटल है, कंटेंट
0: जी
1: राइटिंग, तो
0: जी
1: बहुत सारी चीजें हैं जिस
0: बिल्कुल
1: रूप में आप चाहें आप अपने को वहां अपने व्यक्त कर
0: बिल्कुल
1: सकती हैं, और उसमें कुछ छुपाना चाहे तो छुपा भी सकती हैं
0: बिल्कुल
1: अगर
0: करुणा
1: ऐसी
0: जी,
1: मुझे।
0: इतने इतने जरूरी थॉट्स जो हैं, या कह सकते हैं महिलाएं जो शायद बहुत बार समझ नहीं पाते ना, हम लोग अपनी जो भी ताकत है, जो भी ऊपर वाले ने हमें हुनर दिया, हम बहुत बार उसको तराश

0: नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आपने जिस तरह से बताया, आई होप जितनी भी महिलाएं हमारी सुन रही हैं उस चीज़ को समझें और कोशिश करें कि उनके जहन में जो भी कुछ है उसको पन्नों पर जरूर लिखें। मैम, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम साहित्य की बात करते हैं और हम समाज को देखते हैं, और हर एक समाज में, चाहे वो प्राचीन रहा हो, चाहे अभी का हो या आने वाला समय जो हो, हमेशा देखा जाता है साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपको क्या लगता है, साहित्य से समाज को आज के समय में क्या मिलता है?
1: देखिए, साहित्य तो हमेशा से समाज का दर्पण है, और
0: जी।
1: आप किसी भी काल के साहित्य को जब आप देखेंगे तो वहां उस समय की जो घटनाएं हुई हैं
0: जी
1: उसके आधार पर ही साहित्य का लेखन हुआ है, चाहे वो कहानी है, कविता है। जैसे देखिए, निर्भया कांड हुआ था, उस समय जो भी रचनाएं हुई थी वो कितनी किस तरह की थी।
0: बिल्कुल।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जब ने शुरू करा तो बेटियों पर कविताएं और कहानियां और किस्से आने लगे। तो समाज का जो प्रभाव है वो साहित्य पर पड़ता है। तो साहित्य ऐसा होना चाहिए हमारा कि जो समाज को दिशा दे सके। फोड़
0: बिल्कुल।
1: साहित्य को हमें नहीं लिखना है। इसके लिए
0: हाँ,
1: क्या है कि हमें अच्छा साहित्य पढ़ना होगा।
0: बिल्कुल।
1: और एक बहुत बड़ी चीज है अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आपके जो शब्द हैं वो दोहरे अर्थ को ना लेकर के स्पष्ट रूप से बात को कहने की सामर्थ्य रखते हो,
0: बिल्कुल।
1: व्यापक दृष्टिकोण हो आपका, कि सिर्फ हमें कुछ एक, जैसे मैंने देखा कि कभी क्या होता है, कभी बेटी पे तो बेटी पे ही लिखते रहते हैं। अब बेटी और बेटा, पति और पत्नी, स्त्री पुरुष, हम सब एक हैं। और
0: बिल्कुल।
1: साहित्य का जब हम साहित्य में हम जोड़ते हैं तो ये भेद जो होते हैं ये हमारे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही
0: बिल्कुल
1: पतला सा एक लकीर होती है पुरुष स्त्री के बीच में,
0: जी,
1: क्योंकि पुरुष भी समाज को देख रहा है, स्त्री भी समाज को देख रही है। तो हमको ये देखना है कि जो हम लिखें वो अनुशासित हो और
0: बिल्कुल
1: समाज के हित के लिए हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ ना कुछ अच्छा से
0: सीखने को
1: अनुभव
0: मिले।
1: मिले,
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: सीखने का
0: मैम
1: मिले।
0: जी।
1: तो
0: करुणा
1: ये
0: जी,
1: चीज है।
0: आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे लिसनर्स के साथ इतने खूबसूरत विचारों को शेयर किया। करुणा जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश यही करेंगे कि इसी तरह आपसे और बहुत सारे हमारे जो विद्वान, उनसे बातचीत करके जितने भी खूबसूरत विचार हैं उनको हमारे लिसनर्स तक जरूर हम पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी।
1: बहुत सुंदर आप नका ये है, और सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ करुणा जी, जिन्होंने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए कि किस तरह से साहित्य हम सभी के लिए और खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, आगे की बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि अगला गाना हम आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाए। तो इस प्यारे से गाने को एंजॉय करियो और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हम सभी ने कोशिश की कि जो कलम की ताकत होती है उसको हम कैसे समझें और उसको कैसे पहचानें। दिमाग में जितने भी विचार हम सभी के चल रहे होते हैं, जितने भी कोलाहल होती है ना जहन में, उन सभी को पेपर पर उतार दें तो शायद वो फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी और बेहद बहुत अच्छी चीज हो जाती है। सेकेंड, जैसे कि करुणा जी ने हम सभी को बताया था कि जो साहित्य है वो समाज का आईना है, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर रही होती हैं लेकिन वो चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती हैं, समाज के सामने क्या अपने परिवार के सामने भी नहीं लेकर आ पाती। तो बहुत जरूरी है कि वो महिलाएं खासकर कलम को और कागज को अपनी ताकत बना ले, और अगर जिस तरह से उन्होंने इन चीजों को उकेरना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें शायद उनकी जिंदगी में और आने वाले समय में लोगों की जिंदगी में बेहद आसान होती जाएंगी। तो बस आज की इस बात को यहीं विराम देते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि महिलाओं की प्रतिभा को किसी भी एक भूमिका या किसी एक क्षेत्र में सीमित रखने की जरूरत नहीं है। उनके सपनों को उड़ान चाहिए, उनके हुनर को पहचान चाहिए और उनकी आवाज को बस एक मंच चाहिए होता है। चाहे कलम हाथ में हो, किताब सामने हो, या कोई मंच हो, या कोई क्षेत्र हो, हर महिला के भीतर अपनी पहचान बनाने की ताकत होती है। तो बस अपने हुनर पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है ना, तो की सफलता सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो दूसरी महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी राह बन जाती है। बस इसी बात के साथ अब जरीना को दीजिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से आज इजाजत। अगला प्रोग्राम जल्दी से लेकर वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें आवागमन के योग्य बनाने और बरसात के बाद जरूरत के अनुसार उनका नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पर्व त्योहारों में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा, ऐसे में प्रमुख मार्गों पर आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्वों से पहले आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण के काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढा मुक्ति और काम केवल पैच वर्क तक सीमित न रहे बल्कि नवीनीकरण भी कराया जाए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोकदल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव

ने आधिकारिक पात्रवादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की है और उन्होंने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि ये उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने मुकदमों का निस्तारण करके पास आकर करवा सकते हैं। ना उनसे हम कोई अतिरिक्त शुल्क लेंगे और यदि पहले से उनके कोई दीवानी प्रकरण लंबित हैं और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है। फर्रुखाबाद जनपद में हरिद्वार बिजनौर वी नरोना बांध से आज 8,698 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा और राम गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जनपद के सैकड़ों गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ राहत शरणार्थी स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए बाढ़ राहत शरण स्थल पर शिक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। लोगों को राज्य सामग्री पैकेट व भोजन वितरित किया जा रहा है, साथ ही मेडिकल किट भी दी जा रही है। वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में तिब्बतन मेडिसिन यानी सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय

सुरक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। लोगों को राज्य सामग्री पैकेट व भोजन वितरित किया जा रहा है, साथ ही मेडिकल किट भी दी जा रही है। वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में तिब्बतन मेडिसिन यानी सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय तिब्बतन प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कोल्देन पामोच ने आज सोवा रिगपा का अर्थ उपचार का विज्ञान है, ये केवल दवा तक सीमित नहीं है बल्कि शरीर मन और प्रकृति के संतुलन का आधारित समग्र चिकित्सा पद्धति है। मुख्य वक्ता श्री डॉ. पद्मा गुरुमिता ने तिब्बती चिकित्सा के प्रमाणिक गुरु ग्रंथ ग्योशी की महत्ता भी बताई। जारी एक बयान में बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की जिन छात्राओं ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत अभी तक अपना पंजीकरण और आधार सत्यापन नहीं कराया है, वे 13 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर लें। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।

0: आज ही है किसने लाल पोत दिया है।
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी

0: और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। अठारहवीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। दो रोजा सरबराही इजलास की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ब्रिक्स में 11 बड़े तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात। इस साल ब्रिक्स सरबराही इजलास का थीम लचक, इख्तरा, तावुन और पायदारी की तामीर है। सरबराही इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और ईरानी सदर मसूद पेजिश्कियन शिरकत करेंगे। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, इथोपिया के वजीर आजम बी अबी अहमद अली और सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश की दारुलहुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई इजला में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकाम को बचाव और राहती काम करने की हिदायत दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा बारिश से होने वाले जानी नुकसान, मवेशियों और माशी नुकसान का नोटिस लिया। उन्होंने तमाम सीनियर अफसरान को फील्ड में जाने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि अफसरान मुतासिरा खानदानों से राबता करें और हर मुमकिन मदद फराहम करें। शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी, मवेशी और मुआशी नुकसान का अंदाजा लगाएं और 24 घंटे के अंदर मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएं। पानी जमा होने से लोगों को किसी किस्म की परेशानी

0: सामना नहीं करना पड़े। इस सिलसिले में किसी भी सतह पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने रियासत के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम के दौरान आसमानी बिजली गिरने का इम्कान होता है, इसलिए इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। शदीद बारिशों के दौरान दरियाओं और आबी ज़खायर में नहाते हुए खास एहतियात करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुसलसल खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आगाज करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर खजाना पंकज चौधरी की मौजूदगी में इंतखाबी मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: सेवा संकल्प अभियान के ताल्लुक से वजीर आला ने कल रियासत के तमाम अराकीन असेंबली, एमएलएज, मेयर, जिला पंचायत मुंतजमीन, नगर पंचायत और ब्लॉक सतह के अवामी नुमाइंदों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की।
2: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर की शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में लाभार्थी परिवारों के साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं से बने प्रमुख भवनों और विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करें। समाचार कक्ष से रितेश।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के दोबारा इम्तिहानात के लिए इब्तदाई जवाबी कलीदें जारी कर दी हैं। उम्मीदवार 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की सरकारी वेबसाइट पर जवाबात की कुंजियों पर एतराजात उठा सकते हैं। अंग्रेजी और कॉमर्स के इम्तिहानात 9 सितंबर को मुनक़िद हुए थे, जबकि सोशियोलॉजी का इम्तिहान कल मुनक़िद हुआ था। असतजा के लिए खसूसी टेट 3 नवंबर को मुनक़िद होगा। बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने खसूसी टीटी के इनेकाद के हवाले से अहम हिदायत जारी की है। इस इम्तिहान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त का अमल 5 सितंबर को शुरू हुआ था। ऑनलाइन दरख्वास्त की फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है, जबकि दरख्वास्त में तरमीम करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2026 है। जिन असतजा ने पहले टेट या सीटेट पास किया है, उन्हें खसूसी टेट पास करने की जरूरत नहीं है। रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 26 जिला सैलाब की जद में है। इंतजामिया सैलाब से मुतासर इलाकों की मुसलसल निगरानी कर रही है और राहत और बचाव काम कर रही है। रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक कल 8,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियासना रियासत के कई दरिया अब भी बह रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में रियासत के कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर देती हूँ 100.7 FM रेनबो पर, जो अब हो चुका है सुरों का लखनवी एहसास। और इस पर आपकी दोस्त जरीना एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी है। और इस बार प्रोग्राम जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो गया है। भाई चेंज क्या हो गया, हर घंटे हमारे प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग टाइप्स ऑफ वैरायटी के प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ऐसा ही अगला प्रोग्राम भी है, जिसे हम कहते हैं होठों पे तेरी बात। और बस इसमें क्या होता है कि आपकी जो बात होती है वो हमारे पास पहुंचती है। मतलब यूजुअली यही होता है कि हम एक टॉपिक आपको देते हैं जिस पर हमारे माइंड में तो बहुत कुछ धमाचौकड़ी मची होती है, बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही होती है, साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं उस बारे में।

तो बस ऐसा ही आज का टॉपिक भी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं करना क्या है। हमारी जो आईडी है हमेशा से वही वही आईडी है, हम चेंज नहीं करते। fmakashwanilakhnow@gmail.com, इस पर आपके जो भी थॉट्स हैं वो आप लिख कर भेजेंगे मुझे। और टॉपिक क्या है वो ये है कि अभी कल ही क्या हुआ, एक रिलेटिव से मैं मिली और उनसे मैंने, जो हमेशा हम लोग मिलकर कहते हैं ना, अरे बड़े दिन बाद मिल रहे हो या आए नहीं आप, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि भाई बड़े ही बिजी थे, क्या करें, ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है। और ये बात सिर्फ मैंने उनके मुंह से नहीं सुनी, मुझे पता है आप भी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुनते रहते होंगे, अरे क्या करें बड़े बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता, कैसे फ़ोन करें, कैसे मिलें, या अब मिलना कहाँ हो पाता है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना। तो ओवरऑल मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या सच में उतने ज्यादा बिजी होते हैं जितना हम बिजी बिजी शब्द दूसरों को बोला करते हैं, या ये सिर्फ हमारी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि हम किससे मिलना चाहते हैं, किसको फोन करना चाहते हैं और किसको नहीं। अच्छा, थोड़ा हम डीपली अगर जाकर देखें तो हमें लगता, या शायद आपको भी लगता होगा, उतने ज़्यादा हम बिजी हैं भी नहीं जितना हम दिखाते हैं, जितना इस सेंटेंस को हमने ऑप्ट कर रखा है कि भाई ज़िंदगी बड़ी बिजी हो गई, अब कहाँ मिलने का टाइम है, कहाँ फ़ोन करने का टाइम है ना। तो बस यही जो विचार आपके माइंड में इस टॉपिक पर चल रहे हैं ना, उसको हम चाहते हैं कि आप हम तक भेजिए और यहाँ पर हम शेयर करेंगे हमारे सभी लिसनर्स के साथ। मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आज के समय में लोग सच में उतने ज़्यादा बिजी हैं या सिर्फ बिजी बिजी बोल करके दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। मेल करिए हमें fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। जब तक आप मेल शेल टाइप करेंगे तब तक ये प्यारा सा गाना जो है वो भेजूंगी आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में जीत फिल्म का ये प्यारा सा गाना था आप सभी की रेडियो सेट पर। और इसी के साथ बता देते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात। और मैंने आज आपसे पूछा था कि भाई जिस तरह से लोग आजकल कहते हैं ना कि बड़ा बिजी हैं, मिलने का टाइम नहीं है या टाइम ही नहीं मिलता, आपको क्या लगता है कि इंसान आज के समय में सच में उतना बिजी है, सिर्फ दिखावा करता है बिजी रहने का? तो बहुत सारे मेल्स यहाँ पर आए हुए। सबसे पहला जो मेल हमारे पास आया था वो है रामराज जी का। लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो, होंठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ये मेल आया हुआ है। रामराज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष नीरज, मधुशंकर भैया, रामचरण प्रजापति, और हमको भाई इन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और टॉपिक पर ये लिखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं। टाइम मिलने का सभी के पास रहता है, लेकिन एक दूसरे को देखते हैं और इस तरह बस कह देते हैं। तो इनका भी कहने का सेंस यही है कि भाई टाइम वाइम सबके पास होता है और बस लोग दिखावा करते हैं कि बड़े बिजी हैं, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं। खैर, ये तो इनके विचार थे। इसके बाद सतीश अनेजा जी का भी मेल आया हुआ है, पुरखलूस सलाम भेजा इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल इन्होंने लिख दिया है, मेरा इस्तकबाल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। और आगे इन्होंने टॉपिक पर लिखा है कि ये शत प्रतिशत सही है कि जिंदगी में हर इंसान व्यस्त है, लेकिन कभी हमें इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए जो हम रिश्तों को भूल जाएं और परिवार को समय

ना दे पाए। व्यस्त तो हम सभी हैं, लेकिन दिमाग पर बोझ नहीं रखते हैं। सबसे मिलना जुलना रूटीन में रहता है और अपने शौक भी चाव से ये पूरे करते हैं। आगे लिखा है इन्होंने, जिंदगी खुदा ने बख्शी है तो इसे खुशियों से ही निभाएंगे। और सतीश अनेजा जी, विमला अनेजा, इन्होंने साथ में नाम लिख दिया है। और ये जो मेल आया है ये चंडीगढ़ सिटी से आया, साथ में इन्होंने अपनी फोटो भी भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी प्यारे से मेल के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग को एक चीज़ हमेशा सोच के चलनी चाहिए और उसको कहते हैं ना गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं। ये क्या हो गया हमारे माइक को? कुछ तो प्रॉब्लम है माइक में। ओके, अभी सही। खैर देखिए, बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, कुछ कुछ कभी कभी आवाजें आ जाती हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा माइक सही हो गया, ठोक बजाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो हम ये कह रहे थे कि यूजुअली हम सभी को ये चीज हमेशा सोच के चलनी चाहिए आगे कि हम जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जिस भी तरह से कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, चाहे वो नाम पैसा शोहरत किसी भी चीज को कमाने के लिए क्यों ना, लेकिन इन सबका एक ही मोटिव होता है कि हम ये सारी चीजें अपने अपनों के लिए ही करते हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए कर रहे होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को सबसे ऊपर रखिए कि उनके बाद ये सारी चीज़ें जिंदगी में आती, वो हमेशा सबसे पहले हैं, तो वक्त भी ऑब्वियसली सबसे पहला उन्हीं का होना चाहिए, है ना। और इसी तरह हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का भी मेल है, लिखते हैं मैम जी सादर प्रणाम। अच्छा, ये पिंकू सोनी का मेल है, मेल आईडी किसी और नाम से रहती है और मैं पहले यूजुअली वही देख करके पढ़ देती हूँ। ठीक है, नगर बाराबंकी से ये मेल आया हुआ है और इन्होंने लिखा है, मेरे हिसाब से लोग जितना अपने आप को बिजी बताते हैं उतना रहते नहीं है, और कहने की बात है सबसे ज्यादा समय लोगों को मोबाइल ये हाँ देखिए बात आ ही गई और शायद आनी आनी भी थी कि मोबाइल को देते हैं अपना टाइम और फिर कहते हैं अब टाइम ही नहीं रहता। इन्होंने यही बात लिखी है कि लोग जो हैं वो उतने बिजी नहीं रहते, उससे ज़्यादा लोग टाइम जो है अपना मोबाइल के साथ भी स्पेंड कर रहे हैं। आगे इन्होंने थैंक यू सो मच लिख दिया है इनके मेल को ऐड करने के लिए। सो पिंकू सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। और हाँ, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़िंदगी में लोग टाइम दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली अपने मोबाइल को दे रहे हैं, ना कि अपने अपनों को। तो बस समझने की ज़रूरत होती है कि हम क्यों, क्या, कैसे और कब कर रहे हैं। शायद अगर हमारा जहन उतना खुल जाए तो ये जो प्रॉब्लम रहती है ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ये बिल्कुल होगी भी नहीं। खैर, आपके भी जहन में अगर कोई विचार चल रहे हैं तो ज़रूर हमें मेल करिए fmakashwani@gmail.com पर। क्या सच में लोग उतने बिजी हैं आज के समय में, या सिर्फ दिखावा करते हैं कि बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं? सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।
1: ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म दिल तो पागल है का ये प्यारा सा गाना था आप सभी के रेडियो सेट पर। और इसी के साथ ये देखिए हमारी स्टूडियो की क्लॉक बहुत ही तेजी से भाग रही है। 1:45 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात। और जैसे कि मैंने आज आप सभी से पूछा था, आपको क्या लगता है कि आज का जो समय है, जिस तरह से लोग कहते ना भैया बड़े बिजी हैं, हम मिलने का वक्त नहीं है, बात करने का वक्त नहीं है, आपको क्या लगता है कि सच में लोग उतने बिजी हैं या सिर्फ दिखावा है या सिर्फ कहने की बातें हैं कि बिजी हैं? लोगों को लगता है ना अगर मैं बिजी नहीं दिखाऊंगा तो अपने स्टैंडर्ड से नीचे चला जाऊंगा, है ना। तो इस वजह से भी बहुत बार लोग अननेसेसरली खुद को बताते रहते हैं कि बहुत बिजी हैं। खैर ये तो मेरे अपने ओपिनियन है, मैंने आपसे पूछा था आप क्या सोचते हैं। तो महेंद्र दीपन जी आइए देखते हैं क्या सोचते हैं। सादर प्रणाम आरजे जरीना मैम जी, लिखा इन्होंने, मैं महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से हूँ। मैम सबसे पहले तो एक शिकायत है, इतने दिनों तक कहाँ गायब थी आप? नहीं मैं बिल्कुल भी गायब नहीं थी और आती रहती हूँ, बट हाँ बीच में थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, कुछ पर्सनल रीजंस थे। और आगे इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली है तो लगा आज रेडियो सुनना सफल हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी प्यारे शब्दों के लिए और प्यारी प्यारी बातों के लिए। और इन्होंने लिखा है कि आज आपने पूछा है कि आजकल कोई कहता है कि अरे यार बिजी थे नहीं मिल पाए, क्या सच में लोग इतने बिजी हैं? तो मैम मेरा मानना है कि वक्त हर इंसान के पास है और 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम अपना वक्त किसे देते हैं। मैं भी अपना वक्त उसी इंसान को देना पसंद करता हूँ जो मुझे वक्त दे, मेरी कद्र करे और मुझे महत्व दे, क्योंकि जिसके पास हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालने का समय नहीं है, उसके लिए हम भी अपना ज़िंदगी का कीमती वक्त क्यों निकाले? आखिर रिश्ते सिर्फ बिजी हूँ कहने से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालने से निपटते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनकर

दिन और अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपके प्यारे प्यारे मेल को जब हम यहाँ रिसीव करते हैं हम सभी लोग, तो हम लोग का भी दिन बड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। और ये बात जो आपने लिखी है ना कि 24 घंटे का ही वक्त सबके पास होता है, और आप देखिए सच में प्रायोरिटी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुपर बिजी रहते हैं, लेकिन उनको अपने किसी खास के लिए अगर वक्त निकालना हो तो आप देखिए कि दिन के 6-7 के 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। लेकिन वहीं पर जहां इंसान को लगता है ना ये इंसान अनइम्पॉर्टेंट है या मेरे लायक नहीं या मेरे किसी फायदे के लायक नहीं या मैं उसे मतलब नहीं रखना चाहती हूँ या चाहती हूँ, तो देखिए इंसान के पास टाइम नहीं रहता है। तो बात यहाँ पर बस मुझे लगता है सिर्फ प्रायोरिटी की आती है कि हम किसे कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते, फिर देखिए अब कितना वक्त इंसान के पास रहता उस फला इंसान के लिए, है ना। एमन नवाब क्या लिखते हैं, आइए देख लेते हैं। लिखते हैं, हेलो डियर ज़रीना पी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आगे इन्होंने लिखा है कि सब इम्पॉर्टेंस का खेल है, अगर आप किसी की ज़िंदगी में मायने रखते हैं तो इंसान आपका सबसे बिजी दिन में भी आपके लिए वक्त चुरा लेगा। बिल्कुल सही बात। और आगे लिखते हैं, अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते तो खाली बैठ कर भी आपके लिए वो बिजी ही रहेगा। 24 घंटे सबके पास है, बस फर्क इतना है कि प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहाँ आते हैं। आगे लिखा है, थैंक यू सो मच और लॉट्स ऑफ लव इन्होंने भेज दिया है एमन नवाब संडीला से। बहुत बहुत शुक्रिया एमन, बहुत प्यारा मेल आपने लिखा है। और यही बात आती है, इम्पोर्टेंस वाली बात है। मतलब मैंने वो भी देखा है लोगों को कि भाई शादी से पहले लोग देखे पूरा पूरा दिन फोन पे बात कर रहे हैं, और शादी के बाद ऐसा भी वक्त लोगों का आ जाता है कि टाइम क्या इम्पॉर्टेंट बात करने का भी अपने पार्टनर से भी टाइम नहीं रहता। तो बहुत बार यहाँ पर सिर्फ बात हो जाती है ना प्रायोरिटी की, हम किसे कितनी और कैसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हिमांशु कश्यप लिखते हैं, हेलो मैम, मेरा नाम हिमांशु कश्यप है, जोशियाना का क्या लिखा है, पुल अमर नगर रायबरेली से। अच्छा, जोशियाना का पुल होगा आई थिंक, अमर नगर रायबरेली से ये मेल है। आज मौसम बहुत खुशनुमा है, एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए। ये देखिए इन्होंने क्या लिख कर दे दिया, टॉपिक पर कुछ भी नहीं लिखा है। खैर मेल शामिल हो गया है तो चलिए कोई बात नहीं। राम जी क्या लिखते हैं, मोहनलालगंज लखनऊ से, आइए देखते हैं। लिखते हैं कि आज हर कोई कहता है समय नहीं है, सच ये है कि आज सुविधाएँ पहले से ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी कम लगता है। पहले साधन कम थे लेकिन अपनों के लिए समय हुआ करता था। आज समस्या हमेशा समय की नहीं प्राथमिकताओं की है। जिस व्यक्ति या काम को हम सच में जरूर मानते हैं उसके

मिलीमीटर 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 11 तारीख दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री थाम त्रिंग और श्री हेमंता स्वर्गिरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री लुपसांग नोरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीरी मिव की मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: According to the State Disaster Management Department, more than 44 lakh people remain affected across 85 blocks in 14 districts. More from our correspondent.
1: Relief operations are underway in the affected districts, with 1,046 community kitchens serving food. More than 2,50,000 polythene sheets and over 41,000 of dry ration packets have been distributed. 1,942 boats are in operation, while 812 medical camps have been set up. According to the Water Resources Department, water levels in major rivers have receded over the past 24 hours. However, 8 rivers are still above the danger mark. The Ganga remains above of the danger mark at several locations in Patna, Munger, Bhagalpur and Kahalgaon, while the Kosi is above mark at Baltara in Khagadia and Kursela. The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishri for Akashvani News, Patna.
0: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semi-final in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अरिना सबालेंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद

0: भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
5: This year is a milestone.
0: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा

0: और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
1: BRICS today represents almost 1/4.
2: BRICS संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल,

0: सिक्किम और गुजरात में भी अगले दो दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पहले गांधी स्मृति, तत्पश्चात शर्मा बंधु के आवाजों में चंद श्री राम भक्ति भजन। तो चलिए श्रोताओं, पहले सुनते हैं गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो हमारी शरण के लिए रोहतक में और ये जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन रहते हैं। पहले भी था ऐसा, तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहिर लोग भी पड़े हैं उसी जगह पे रहते हैं। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है, तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे। और पीछे वहां पर देखो हक की बात आ जाती है, हक से नहीं, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, ना दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए, और नहीं तो भूखा रहे। और दलना या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबर ही मानता। तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे इसी बात पे रहो चाहते उसका काम बिगड़ जाता है, और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। तो वो तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्टियों का तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड दे सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम डरा देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है वो तो तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ों कथा वो सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हमने नहीं किया है। करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो

एक सारा दरिया पड़ा है, तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना ले लिए है। तो मुझको ये कवि कथा आपको सुनाने भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे जीवन में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से करो साहब तो पीछे हम यही, तो पीछे हम जाके जात स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे, और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं, इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है नहीं, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोली हो और वो सब प्रजा के लिए है। तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो शूद्र तो वो सेवा करे, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना, सब सेवा है, जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है, लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसको पीछे पंचम भाव पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्मों से हट गए इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति के अंतर्गत हरिजन विषय पर गांधी जी का विचार। आइए अब आनंद लेते हैं शर्मा बंधु की आवाजों में चंद श्री राम भक्ति भजन।

0: गुरुओं की वाणी यही तो बताए, नाम ही तो राम तक पहुँचाए।
1: वेदों की वाणी यही तो बताए, नाम ही तो राम तक पहुँचाए।
0: पर ऐसा भाग तब

शर्मा बंधु के इन्हीं श्री राम भक्ति भजनों के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथियों से चंद आधुनिक कोकबोरोक नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओ, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथी कलाकारों से चंद आधुनिक कोक बोरोक नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे अरुण जमातिया, जाशवा हालम, प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कोक बोरोक नगमे। इसी के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी खंडू पेमा से परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटे विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खंडू पेमा है। मैं दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय की 5वीं सत्र की छात्रा आपके समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूंगी जो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा है। परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटे, यानी हाउ टू डील विथ स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। परीक्षा जीवन का वह चरण है जिसमें विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ कई बार तनाव, चिंता और दबाव भी बढ़ जाता है। यह तनाव स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे ठीक तरीके से संभाला ना जाए तो यह हमारी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझे कि तनाव होता क्यों है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आवश्यक है सही योजना। जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बिना किसी योजना के शुरू करते हैं तो काम बढ़ता जाता है और मन में घबराहट पैदा होती है, लेकिन अगर वही पढ़ाई समय के अनुसार बांटी जाए तो न केवल बोझ कम लगता है बल्कि मन में एक संतुलन भी बना रहता है। एक सरल सा टाइम टेबल जिसमें पढ़ाई, आराम और हल्की गतिविधियों का संतुलन हो या तनाव को काफी कम कर देता है। परीक्षा के समय याद रखने की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शरीर और मन दोनों को आराम चाहिए। कई विद्यार्थी पूरी रात जाग कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ध्यान भटकता है। नियमित नींद, पौष्टिक भोजन और पानी का पर्याप्त सेवन मन और शरीर दोनों को शांत रखते हैं। यदि मन भारी लगे तो कुछ मिनट गहरी सांस लेना, हल्का संगीत सुनना या थोड़ी देर टहलना बहुत सहायक होता है। अक्सर तनाव इसलिए भी होता है क्योंकि विद्यार्थी खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी दोस्त ने अधिक पढ़ लिया, किसी ने जल्दी तैयारी शुरू कर दी, इन सब बातों के कारण मन विचलित हो जाता है। लेकिन हर विद्यार्थी की सीखने की क्षमता अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही अनुसार आगे बढ़े और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। तुलना हमेशा तनाव देती है, जबकि आत्मविश्वास तनाव को दूर करता है। परीक्षाओं के समय परिवार और शिक्षकों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। यदि मन में कोई डर या उलझन हो तो उसे अंदर दबा कर रखने के बजाय

0: किसी से बात करना अधिक लाभदायक होता है। कई बार सिर्फ अपनी बात साझा करने से आधा तनाव खत्म हो जाता है। सकारात्मक बातचीत मन को मजबूत बनाती है। परीक्षा के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ाई करने से मन थक जाता है और एकाग्रता घटती है। थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके आंखों को आराम देना या हल्का स्ट्रेचिंग करना दिमाग को फिर से तरोताजा कर देता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि परीक्षा को जीवन का अंतिम पर्व मानकर लगातार तनाव लेना सही नहीं है। परीक्षा केवल हमारी सीखने की क्षमता को समझने का एक माध्यम है, हमारी पूरी पहचान नहीं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास, ये तीन बातें मिलकर किसी भी तनाव को हराने का सबसे अच्छा रास्ता है। और हमें हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि असली परीक्षा सिर्फ एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं। असल जिंदगी हमारी मेहनत और हिम्मत से बनती है। तो आइए हम परीक्षा को डर की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखें और तनाव को संतुलित सोच के साथ दूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के पांचवीं सत्र की छात्रिका कुमारी खांडू पेमा सिंह, परीक्षाओं के दौरान तनाव से कैसे निपटे विषय पर एक वार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब समाप्त हुआ।
2: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए, ये जवानी है दीवानी फिल्म से रेखा भरद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
4: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

अगला नगमा पेश है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। सिंग इज किंग फिल्म के इस गीत को लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोता, नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है हीना फिल्म से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के आवाजों में, बोल एवं संगीत रविंद्र जैन का।

0: हिना फिल्म के इस गीत के साथ ही महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत अब समाप्त होता है।
1: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए पाठशाला फिल्म से तुलसी कुमार और हनीफ शेख की आवाजों में। बोल एवं संगीत हनीफ शेख का।

अगला नगमा पेश है शालमाली कोलगारे की आवाज में। दावते इश्क फिल्म की इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अगला नगमा सुनिए आई हेट लव स्टोरी फिल्म से विशाल दत्तलानी की आवाज में, बोल अन्विता दत्त के और संगीत विशाल शेखर का।

बॉडीगार्ड फिल्म से सुनिए अगला नगमा एश किंग और क्लिंटन सेरियो की आवाजों में। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे यारियां फिल्म का नगमा। प्रीतम द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने। अगला नगमा पेश है अतीफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में। फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म की इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: कॉकटेल सुन सभी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा मोहन कनन और शिल्पा राव के आवाजों में, बोल इम्तियाज अली के और संगीत प्रीतम का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:31 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। राग है मध्यालय तथा तबले पर संगत दिया है श्री दुर्गा प्रसाद ने।

ते मध्यालय राघवर पंडित रोनू मजुमदर से बांसुरी वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं में ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में आयोजित पहले लई बांगो सेंट्रल सोलोंग गद्य समारोह में भाग लेते हुए युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश में आज विभिन्न विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में सार्वभौमिक बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आगामी जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक की तैयारियों के मद्देनजर लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने अधिकारियों और स्थानीय हॉस्पिटैलिटी संचालकों की एक बैठक गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने तवांग में आयोजित होने वाले 14वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2026 की तैयारियों को लेकर तैयारी सह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईटानगर स्थित स्टेट बैंक्वेट हॉल में यू मेंटर ऐप एनेमिया मुक्त भारत अभियान और RBSK 2.0 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत और भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शन उद्देश्य विश्व कल्याण का होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्किन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलोपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों मंत्रियों का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में

0: हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वेइरा का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार संपर्क और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: है।
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग ने भी इस वर्ष पूरे कर लिए हैं। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। वे आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन सर्कल के अंतर्गत जेपीएस जनरल प्लेग्राउंड में आयोजित पहले लेई बांगो सेंट्रल सोलोंग गदे समारोह 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आयोजन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को मनाने तथा संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौखिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है, लेकिन उचित रूप से दस्तावेजीकरण नहीं किए जाने पर इनके भुला दिए जाने का खतरा बना रहता है। उन्होंने स्थानीय पारंपरिक प्रणालियों, गीतों, कथाओं, मौखिक साहित्य और पारंपरिक ज्ञान के ऑडियो विजुअल अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का दस्तावेजीकरण युवा पीढ़ी को डिजिटल युग के अनुरूप और माध्यमों से अपनी विरासत से जुड़ने और उसे समझने का अवसर प्रदान करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विकास का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आज विभिन्न विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में सार्वभौमिक बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह दिवस शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबोधन की स्मृति में मनाया जाता है। राज्य के विभिन्न विकेवी विद्यालयों में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बालीजान, चिंपू, निर्जुली, बंदरदेवा और विवेक विहार स्थित विकेवी भी शामिल है। इसके अलावा राज्य के अन्य विकेवी संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक बंधुत्व, सेवा, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में समर्पित भागीदारी के संदेश पर चिंतन करने का अवसर दिया जा रहा है। आगामी जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक यानी ZFM की तैयारियों के मद्देनजर लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने अधिकारियों और स्थानीय हॉस्पिटैलिटी संचालकों की एक बैठक गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की। बैठक में महोत्सव से पहले ही आवश्यक लॉजिस्टिक तैयारियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। 4 दिवसीय वार्षिक जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का आयोजन आगामी 24 से 27 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान लोअर सुबनसिरी जिले में देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों और आगंतुकों के पहुंचने की उम्मीद है। समन्वय बैठक का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ओले परमे ने जिले के सभी हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों को महोत्सव में आने वाले लोगों को उच्चतम स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरम में सुनिए आनी लोपसांग सेयांग और आनी लोपसांग सेटोन, लामा मेतो टाशी और लामा रिंचन सेवांग से बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग के तीसरी कक्षा के विद्यार्थी श्री दोर्जी क्षमा करें रिंचिन दोर्जी से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण में सुनिए बाजीगर दीवाना दूल्हे राजा, इम्तिहान और तड़ीपार फिल्म से विनोद राठौड़ का गायन नगमा।

आज शाम 7:11 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए लता मंगेशकर से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 12 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक दिगारू मिश्मी नगमों का आनंद लीजिए निफालू बू के आवाज में कल दोपहर 3 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी सिरिंग चौटन से एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए पार्टनर फिल्म से सोनू निगम कुणाल गांजावाला और सुजैन डी मेलो, गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से मोहम्मद फैज और सलामे इश्क फिल्म से महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए बरेली की बर्फी फिल्म से अर्को, सनम रे फिल्म से अरिजीत सिंह और अमाल मलिक, हॉलीडे फिल्म से अरिजीत सिंह, रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर, एक पहली लीला फिल्म से उजेर जसवाल, वीर फिल्म से राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो, वांटेड फिल्म से श्रेया घोषाल और शान, दिल तो बच्चा है जी फिल्म से मोहित चौहान, दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान और चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित वीजी जोग से वायलिन वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिंग में सुनिए श्री दामा खांडू जी से खाचे फालुक लापचा उपन्यास का तीसरा भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर मोनपा में कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए जिग्मे डुंडुप और जंबे थुतन से चंद मोनपा लोकगीत। लेरिम सेरा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जिदुन लेरिम में सुनिए लामा मेथो टाशी लामा रिंचन सेवांग आनी लोपसांग सियांग और आनी लोपसांग सेटोन से बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए जिला अस्पताल तवांग के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेंजन कुंगा से मातृत्व के दौरान प्रसाव पूर्व प्रसावकालीन तथा प्रसावोत्तर देखभाल के महत्व विषय पर हुई भेंट वार्ता। दोनों और गीतों का कार्यक्रम साजोर आवाज कल शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने में सुनिए फना फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील कल रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने

0: इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centres of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi this evening, Mr. Modi said, today, BRICS nations represent 50% of the world's population, 40% of its GDP and over 25% of the global trade.
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।

अगला नगमा पेश है विनोद राठौड़ और साथियों की आवाजों में। दीवाना फिल्म के इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गायक विनोद राठौड़ द्वारा गाए चंद हिंदी फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं दूल्हे राजा फिल्म से विनोद राठौड़ की आवाज में, गीतकार समीर और संगीत आनंद मिलिंद का।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए विनोद राठौड़ की आवाज में। इम्तिहान फिल्म की इस गीत को लिखा है फैज अनवर ने और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

तड़ीपार फिल्म से भी आप सुन रहे थे दर्पण कार्यक्रम का अंतिम नगमा विनोद राठौड़ की आवाज में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल एवं श्रम गतिशीलता तथा जनजन के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों पर द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्ष सहित आपसी हित से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। ये प्रदर्शनी पहली बार भारत में इस महीने की 9 तारीख से आयोजित की गई, जिससे व्यापार और औद्योगिक संबंधों को और मजबूत करने में इसके महत्व को रेखांकित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान आपसू प्रतिनिधिमंडल ने तागिन जनजाति के सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर राज्यपाल को ताक्सिंग मुद्दे से जुड़ी अपनी चिंताओं और आशंकाओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र और वहां के लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर भी अपने विचार साझा किए। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव और नागरिक के हित तथा कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी गांव पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। राज्यपाल ने राष्ट्र के प्रत्येक इंच भूभाग की सुरक्षा के लिए भारत

0: सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास राष्ट्र प्राथमिकताएं हैं और इन सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग राष्ट्र की शक्ति और दृढ़ता की पहली पंक्ति है। ICAR केंद्र क्षेत्र जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग और सारसो सीमित के सहयोग से दुर्लभ मछली प्रजाति शिजोपाई कोप्सिस वरेली की पहली बार तवांग में एक नई प्रजाति की प्राकृतिक झील में दर्ज की गई है। ये झील समुद्र तल से लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए कहा है कि ये खोज भारत की मीठे पानी की जैव विविधता में योगदान देते हुए इस दुर्लभ हिमालयी मछली के ज्ञात के क्षेत्र का विस्तार करती है। इससे पहले इस प्रजाति को तिब्बत और चीन के ऊंचाई वाले इलाकों में दर्ज किया गया था। श्री मैन ने कहा है कि इस तरह की खोज हमें ये याद दिलाती है कि अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए निरंतर अनुसंधान और संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की अनूठी जैव विविधता को दर्ज करने के प्रयासों के लिए वैज्ञानिकों मत्स्य विभाग और सारसो समिति की सराहना भी की। राज्यभर में आज विभिन्न विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में सार्वभौमिक बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये दिवस शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संवत में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबोधन की स्मृति में मनाया जाता है। राज्य के विभिन्न केवी विद्यालयों में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बालीजान चिंपू निर्जुली बंदरदेवा और विवेक विहार स्थित वीकेवी भी शामिल है। इसके अलावा राज्य के अन्य वीकेवी संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक बंधुत्व सेवा चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में समर्पित भागीदारी के संदेश पर चिंतन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कुरुंकुमे जिले के कातुक और रूबा गांव में स्थानीय ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने गत 13 जुलाई 2026 को कमला नदी पर अचानक आए पार के दौरान अदम्य साहस मानवीय भावना और निस्वार्थ सहायता का परिचय दिया। उनके साहस समर्पण और बहुमूल्य सहायता के सम्मान में कातुक और रूबा गांव के कुल 11 ग्रामीणों को आज दामिन सर्कल के हुरी में आयोजित समारोह में ITBP महानिदेशक का प्रशंसा पत्र प्रदान और सम्मानित किया गया। स्थानीय समुदाय के निरंतर सहयोग के प्रति सद्भावना और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से कातुक और रूबा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट सोलर लालटेन और खेल सामग्री भी वितरित की गई। औलिका वाली DC कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय निगरानी समिति यानी DLMCC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगस्त 2026 के जिला विकास रिपोर्ट यानी DDR की स्थिति की समीक्षा भी की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar, the news read by Hage Ani. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin today reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains. During their bilateral talks in Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi once again reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. External Affairs Minister said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India from 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. The two leaders agreed to remain engaged in an effort to strengthen further the special and privileged strategic partnership between the two countries. Governor Lieutenant General K.T. Pranayak interacted with the representatives of the All Arunachal Pradesh Students Union led by its president Meji Taku at Lok Bhavan Itanagar today. During the meeting, the APSU delegation along with the community leaders of the Tagin tribe apprised the governor of their concerns and apprehensions regarding the taxing issue and shared their perspectives on matters affecting the region and its people. The governor assured the delegation that the interests and well-being of every village and citizen of Arunachal Pradesh remain paramount.

लता मंगेशकर की इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है दातारंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा। मलवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश दाकड़ नाइमा, रांजूभाई दाकड़, युवराज सिंह दाकड़ और शिवांगी दाकड़ ने। आप सभी की फरमाइश भी प्रस्तुत है दिल है तुम्हारा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम का गाया गीत, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है अस्थि जलना महाराष्ट्र से किस्मत फिल्म के नगमे का। इस नगमे को गाया है आशा भोसले ने, लिखा नूर देवशी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कलका हरियाणा से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बट्टा बजाज की फरमाइश पे सुनिए हीर रांझा फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत। कैफी आजमी की लिखी इस गीत को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: अगला नगमा सुनिए नायवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिदा और अलका मिदा के फरमाइश पर चरस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया नगमा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। आप सभी के फरमाइश पर प्रस्तुत है तवायफ फिल्म से महेंद्र कपूर का गायन नगमा, बोल हसन कमल के और संगीत रवि का।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए सुखद होगा क्योंकि हम आपको सुनाएंगे कि कैसे चीन में भारत के युवा खिलाड़ियों ने मलेशिया की हेकड़ी गुम की और दुबई की तपती गर्मी में कल शेफाली वर्मा ने कैसे बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। इसके अलावा अमरीकी ओपन टेनिस का रोमांच और खेल मंत्रालय के कुछ बड़े फैसलों पर भी रहेगी नजर। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। महिला टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत कल बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबकीना और आर्याना सबालेंका महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का गठन किया। 20 निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि जूनियर एशिया हॉकी कप से। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। पूरे मैच का हाल विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान अनमोल इक्का के 2 गोल की मदद से मौजूदा चैंपियन भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनमोल ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में अनमोल के 16 गोल हो गए हैं। गोलकीपर विवेक लाकड़ा ने भी 1 पेनल्टी स्ट्रोक समेत कई शानदार बचाव करके भारत का दबदबा बनाए रखा। आज के पूरे मैच पर नजर डालें तो टीम ने आक्रामक शुरुआत की। अजीत यादव पहले 2 मिनट में 2 बार मलेशियाई सर्कल में घुसे। भारत को जल्दी ही 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले। हालांकि मलेशिया के गोलकीपर अमसियार मोहम्मद आदिब ने उन्हें गोल में बदलने नहीं दिया। पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में मलेशिया गोल करने के करीब पहुंचा, पर भारतीय टीम ने उसका प्रयास नाकाम कर दिया। इस बीच भारत को 16वें मिनट में 4th पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान अनमोल ने इसे गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिलाई। मलेशिया को भी 1st पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत ने उसके इस प्रयास को भी नाकाम कर दिया। भारतीय गोलकीपर लाकड़ा ने 34वें मिनट में गोल के 2 प्रयासों को नाकाम किया। 4th क्वार्टर में भारत के लिए सुखविंदर ने 2रा गोल किया। भारत को 54वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर मलेशिया ने वीडियो रेफरल लिया, लेकिन वीडियो रेफरी ने मूल फैसला कायम रखा। अनमोल ने इस पर गोल करके भारत की बढ़त 3-0 की कर दी। आखिरी सीटी बजने से 24 मिनट पहले मलेशिया को 8वां पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एम राहुल ने गोल में बदला। भारत की नजरें अब लगातार 4थे और कुल 6 खिताब जीतने पर है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो क्या बात है, भारतीय युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखलाया है, तो जहां लड़के फाइनल में पहुंच चुके हैं, वहीं हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम भी कहां पीछे रहने वाली थी। कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण कोरिया से होना है। और आपको याद दिला दूं कि पिछले मैच में हमारी इन शेरनियों ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया था। पूजा मलिक ने तो गोलों की झड़ी लगाते हुए हैट्रिक ही बना डाली। तो हमारे तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं उस खेल की जो भारत के रग रग में बसता है, यानी कि क्रिकेट। भारत की महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। दुबई में कल पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। तो आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि शेफाली वर्मा की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत कैसे यह मैच भारत के पक्ष में हुआ।
2: India finishing things off in style. They haven't edged into the final. They have marched in, ruthless without rushing. That is how India have taken this semi-final away.
3: सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के अर्धशतक की बदौलत 7 बार चैंपियन रह चुकी भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया और रविवार को होने वाले महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। शेफाली ने 7 चौके और 3 छक्के सहित 64 रन बनाए। कल के मैच में अन्य भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष भी शुरुआत में धीमी रही, लेकिन उन्होंने 16 गेंद में 21 रन बनाकर महत्वपूर्ण रन जोड़ने में सफलता हासिल की। वहीं प्रतिका रावल ने 20 रन का योगदान दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने पारी के अंत में 2 छक्के लगाए। पिच की परिस्थितियां भी काफी चुनौतीपूर्ण थी, बावजूद इसके शेफाली ने 40 गेंद की आक्रामक पारी की बदौलत टीम को 6 विकेट पर 149 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान शेफाली को 3 बार जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। बांग्लादेश की टीम के लिए 150 रन के लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहा। टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। उसके लिए शौरना अख्तर नाबाद 22 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रही। दिलारा अख्तर ने 21 और कप्तान निगार सुल्ताना ने 19 रन बनाए। भारत के लिए अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 सफलता हाथ लगी। भारत फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हो रहे दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से खेलेगा। मनोज, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो श्रोताओं, सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रनों से हरा दिया भारत ने, लेकिन यह मैच इतना आसान नहीं था जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में सुना कि दुबई की पिच बड़ी टेढ़ी थी। तो फिर ये करिश्मा कैसे हुआ, हमारे सहयोगी मनोज ने इस दिलचस्प रिपोर्ट में बताया है। बांग्लादेश ने शेफाली को 3 बार जीवन दान दिया और शेफाली ने दिखा दिया कि क्रिकेट में कैच छोड़ोगे तो मैच तो छूटेगा ही। अब रविवार को होने वाले फाइनल पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चलिए क्रिकेट की पिच से सीधे आपको ले चलते हैं अमरीकी ओपन टेनिस के कोर्ट पर, जहां मुकाबला अब आर पार का हो चुका है। महिला सिंगल्स में बड़ा धमाका हुआ है। कजाकिस्तान की दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबकीना ने घरेलू स्टार कोको गॉफ को हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब फाइनल में उनका मुकाबला होगा मौजूदा चैंपियन और दुनिया की सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक आर्याना साबालेंका से। तो यह मैच देखने लायक होगा, इसे मिस मत कीजिएगा। हालांकि आपको बता देना चाहूंगी कि सेमीफाइनल में एलेना ने चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराया। इससे पहले बेलारूस की साबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। महिला डबल्स की बात करें तो फाइनल में आज रात कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर

0: टाउनसेन की चेक अमरीकी जोड़ी का मुकाबला अमरीका की रॉबिन मॉन्टगोमरी और एश्लीन क्रूगर से होगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला रूस के कारेन खाचानोव से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब श्रोताओं, आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताते हैं। कहते हैं ना कि अपनी प्रतिभा को पहचान कर कोई भी अगर उस पर कड़ी मेहनत करता है और निखारने की कोशिश लगातार करता है तो एक ना एक दिन उसे बड़ी सफलता जरूर मिलती है। नवांग सेरिंग की कहानी कुछ ऐसी ही है। नवांग ने लद्दाख मैराथन जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। नवांग सेरिंग ने लद्दाख मैराथन में 122 किलोमीटर सिल्क रूट अल्ट्रा की दूरी को 12 घंटे 12 मिनट और 18 सेकंड में पूरा कर रिकॉर्ड बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। सेरिंग का यह पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में वह चैंपियन बनकर निकले हैं। नवांग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी कोचों, सहयोगियों और प्रशासन को दिया है। लद्दाख मैराथन जीतने के बाद उन्होंने युवाओं से क्या अपील की, आइए सुनते हैं।
1: अपना टैलेंट वेस्ट मत कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग रनिंग करो, एक अच्छा सा टैलेंट होता है या तो चीज का टैलेंट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना हुनर दिखिए और आगे बढ़िए।
0: तो नवांग की यह सफलता निश्चित रूप से उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अभावों के बीच बड़ी उपलब्धि हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो खेल के मैदान से अब बाहर निकलते हैं और खेल के दफ्तरों से की तरफ चलते हैं, जहां से कुछ बड़ी खबरें हैं आ रही हैं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों में साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए एक 20 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल यानी कि एनएसईपी का गठन किया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें देश के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल है, ताकि चुनावी अंपायरिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। इस साल भारतीय ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ के बड़े चुनाव होने हैं, जिन पर इस पैनल की कड़ी नजर होगी। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के लिए खेल मंत्रालय से एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। मंत्रालय ने विशेष छूट देते हुए आईओए को अपनी 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को वैसे ही जारी रखने की अनुमति दे दी है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति चाहती थी। फिलहाल संघ की कार्यकारी परिषद 16 सदस्य हैं। परिषद में 16 सदस्य हैं, जिनमें भारत में आईओसी के पदेन सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने कामकाज के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय और चार्टर और नियमों का मुख्य रूप से पालन करना होगा। अब चलते हैं दिल्ली के हमारे नन्हे और युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्यारी और मददगार खबर की तरफ। अगर आप दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में रोज पसीने बहा रहे हैं तो दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत अब जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि पैसों की कमी खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के आड़े ना आए और सचमुच यह ग्राउंड लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन और सराहनीय कदम है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहां दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रास रूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंट शुरू करने की मंजूरी दी। इस नई पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटरों और स्टेडियमों में नियमित रूप से ट्रेनिंग लेने वाले योग्य युवा खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, और इसका उद्देश्य उन आर्थिक बाधाओं को दूर करना है जो ट्रेनिंग में रुकावट डाल सकती है, और यह पक्का करना है कि युवा खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से ही लगातार ट्रेनिंग मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई सहायता योजना मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाती है। नई व्यवस्था के तहत हर सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से एनरोल किए गए ट्रेनीज में 25% तक को सहायता दी जाएगी। आमतौर पर किसी एक स्टेडियम में सेंटर में ज्यादा से ज्यादा 100 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ज्यादा ट्रेनीज वाले बड़े स्टेडियमों में बजट की उपलब्धता के आधार पर यह सीमा 150 खिलाड़ियों तक बढ़ाई जा सकती है। इस योजना में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। लाभार्थियों का चयन खेल में प्रदर्शन और क्षमता, नियमित उपस्थिति और अनुशासन और आर्थिक जरूरत के आधार पर किया जाएगा। योग्य खिलाड़ियों को तय शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें एनरोलमेंट को और कम से कम 80% उपस्थिति शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाभार्थियों के चयन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी, जिसमें हर तिमाही उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA ने 2025-26 सीजन के लिए क्लबों और खिलाड़ियों को कुल 1,43,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। एसोसिएशन ने इस बार सभी कैटेगरी में पुरस्कार राशि में 10% की बढ़ोतरी की है। ये पुरस्कार गुरुवार को यानी कि कल अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित सालाना पुरस्कार वितरण समारोह में दिए गए। रोहन जेटली ने क्या कहा कि DDCA दिल्ली में क्रिकेट को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: ये एक बड़ा एनुअल फीचर है जिसमें हमारे कोई 1800 प्लस मैचेस होते हैं दिल्ली शहर में क्लब लेवल पे। नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट होता है हॉट वेदर टूर्नामेंट, जिसकी विनिंग अमाउंट इज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। क्लोज टू अराउंड 2.5 crores इज गिवन आउट एज प्राइज मनी टू अपकमिंग क्रिकेटर्स। और बच्चों में टैलेंट है, जितने बेस्ट परफॉर्मर्स उनको यहाँ पे अक्नोलेज करा जाता है, उनका सम्मान करा जाता है। और विनिंग क्लब्स की थ्रू आउट द ईयर कमिटेड परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन की केवल एक अक्नोलेजमेंट है।
0: तो श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन में खेल की दुनिया की हलचल बस यहीं तक। आपको क्या लगता है, क्या संडे को हमारी महिला क्रिकेट टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों एशिया कप का खिताब घर ला पाएंगी? अपनी राय हमें आप जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के

0: दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक

0: चुनौतियां तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

0: भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia annual summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during the meeting.
2: मुझे विश्वास है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने

0: scored 2 goals while Sukhvinder scored 1 goal. 5-time champions India had entered the last 4 in a dominant fashion, defeating Chinese Taipei 15-0 in the final Pool A match. India will face South Korea in the finals on Sunday. South Korea defeated Pakistan 4-1 this evening to reach the final. Indian junior women's team will face South Korea in the semi-final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi, discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of the Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, मोनपा में कार्यक्रम नमतर लेरिम शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा कल शाम 7:10 पर और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत रात्रि 8 बजे। जी श्रोताओं, तो यही थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्रीमती सांगी चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री थाम सिंह और श्री हेमंता स्वर्गिरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दें। शुभरात्रि। जय हिंद।